0: हर हर मन बुठा मन बुठा मन बुठा।
1: श्लोक महला पहला। नानक फिक्का बोलिया है तन मन फिक्का होए, फिक्को फिक्का सदिया फिक्का फिक्की सोए, फिक्का दरगाह सटिया में दुखा फिक्के पाए, फिक्का मुर्की आखिया पड़ाले सजाए। महला पहला।
0: अंदरों झूठे पेज बाहर दुनिया अंदर फैल, अठ सठ तीर्थ जे ना वह उतरे ना ही मैल, जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार, तिनले हो लगा रब सेती देखने विचार। रंग हसै रंग रूप है चुप भी कर जाहे परवाह ना है, किसे केरी बात सच्चे ना हा, दरबार ऊपर खर्च मंगा जबै देता खाहे, दीवान एको कलम एका हवा तुम मेल, दारण लेखा पीड़ छुटै नानका जो तिल।

के करेगा अगे जाए हमें बिच जगत मुआ मर्द मरदा जाए जिचर बिच दम है तिचर ना चेताई के करेगा अगे जाए ज्ञानी होए सोच तन होए अज्ञानी अंध कमाए नानक इथ कमावे सो मिले अगे पाए जाए महला तीजा तोर खसम का हुक्म पाया वेण सतगुर चेतिया न जाए सतगुर मिले अंतर रव रहिया सदा रहिया लिव लाए दम दम सदा समाल दम ना बिरथा जाए जन्म मरण का पाओ गया जीवन पदवी पाए

आप रूप दिखाल दा आप लाए ते अन्ना आप मोनी वरत दा आप कथा ज्ञाना कौड़ा किसे न लगई सब नहीं पना उस तत वरन न सकिया साध साध कुर्बाना उस तत बरन ना सकिया साध साध कुर्बाना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा हउमै विच जगत मुआ मरदो मरदा जाए जिचर विच दम है तिचर ना चेताई के करेग अगै जाए।

रंग परंगे अनेक न जपन करत भाव, जी अंदर जियो सब किस जाने ला, सब किस तेरे बस तेरा घर।

हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी, क्या नानक जंत विचारा। तू काट काट अंतर सर्व निरंतर जी, हर एक पुरख समाना। एक दाते एक भेखारी जी, सब तेरे चोज बेडाना। तू आपे दाता आपे भुगता जी, हाँ तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी, तेरे क्या गुण आख वखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी, जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्यावह हर त्यावह तुद जी, से जन जुग मह सुखवासी। से मुक्त भये जिन हर त्याया जी, तिन तूटी जम की फासी। जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जी, तिन का भउ सब गवासी। जिन सेवया जिन सेवया मेरा हर जी, ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी, जन नानक तिन वल जासी। तेरी भगत भंडार जी, परे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी, हर अनेक अनेक अनंता। तेरी अनेक करहे हर पूजा जी, तप तप है जपहे बेअंता। तेरे अनेक पढ़है बहु सिमरत शास्त्र जी, कर क्रिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी, जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आदि पुरख अपरंपर करता जी, तुद जे वडे अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी, तू निःचल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी, तू आपे करहै सो होई। तुद आपे सृष्ट सब उपाई जी, तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी, जो सब सह का जानोई। आसा महला चौथा, तू करता सचियार मैडा साई। जो तौ भावै सोई थीसी, जो तू देह सोई हौ पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी ते आया, जिसनों कृपा करहे तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मनमुख गवाया, तुद आप विछोड़या आप मिलाया। तू दरियाओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल, विजोग मिल विछुड़या संजोगी मेल। जिसनो तू जान आए हे, सोई जन जाने। हर गुण सद ही आख वखाणै, जिन हर सेवया तिन सुख पाया। सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए। तुद बिन दूजा आवर न कोए, तू कर कर वेख है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला। तित सरवरड़ा पैले निवासा, पानी पा

किया पंख जो मोह पग नहीं चाला हम देखा तह डूबियले मान एक ना चेत समूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ ना हव जति सती नहीं पढ़िया मूर्ख मुगदा जन्म भया प्रणवत नानक तिनकी सरना जेन तू नाही विसरिया आसा महला पंजवा पई प्रापत मानुख देहुरिया गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया अवर काज तेरा कितै न काम मिल साध संगत भाज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन कै जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाव जाप ताप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करम्मा सारण परे की जाप

आया कहो नानक हम नीच कर्मा शरण परे की राखहु शर्मा। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो वाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूरन होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतिपारा हमरे दुष्ट सवै तुम कावहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिखियो सवै करतारा मोर रक्षा निज कार दै करिया सब बैरन कौ आज संगरिया पूरन होए हमारी आसा तोर भजन की रह प्यासा तुम्हें छाड कोई अवर ना ते आऊं जो बर चाहो सो तुम ते पाऊं सेवक सिख हमारे तारी है चुन चुन सत्र हमारे मारी है आप हाथ दाय मुझे उबरी है मरन काल का त्रास निवरी है हु जो सदा हमारे पच्छा श्री अस तुज जू करिय हो रक्षा राख ले हो मोहे राखन हारे साहेब संत सहाय प्यारे दीन बंद दुष्टन के हंता तुम हो पुरी चतुर्दश कंता काल पाए ब्रह्मा बप तरा काल पाए शिवजू अवतरा काल पाए कर बिसन प्रकाशा सकल काल का किया तमासा जवन काल जोगी शिव कियो वेदराज ब्रह्मा जूथियो जवन काल सब लोक सवारा नमस्कार है ताहे हमारा जवन काल सब जगत बनायो देव दैंत जक्षन उपजायो आदि अंत एक अवतारा सोई गुरु समझी अहो हमारा नमस्कार तिस ही को हमारी सकल प्रजा जिने आप सवारी सेवकन को सेव गुण सुख दियो सत्रन को पल मोबद कियो काट काट के अंतर की जानत भले बुरे की पीर पछानत चीटी ते कुंचर अस थूला सब पर कृपा दृष्ट कर फूला संतन दुख पाए ते दुखी सुख पाए साधन के सुखी एक एक की पीर पछाना काट काट के पट पट की जाना जब उद करख करा करतारा प्रजा तरत तब देह अपारा जब या करख करत हो कबहू तुम मैं मिलत देह तर सबहू जेते बदन श्रेष्ठ सब तारै आप आपनी बूझ उचारै तुम सब ही ते रहत निरालम जानत वेद भेद अर आलम निरंकार निर्विकार निर्लंब आद अनिल अनाद असंभ ताका मूड उचारत पेदा जाको पेव न पावत बेदा ताकौ कर पाहन अनुमानत महामूड कछ भेद न जानत
महादेव कौ कहत सदा सेव, निरंकार का चीनत नह पेव। आप आपनी बुद्ध है जेती, बरनत पिन पिन तोहे तेती। तुमरा लखा ना जाए पसारा, केहो विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप सरूपा, रंक भयो राव कही पूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत पुज खान बहुर राच दीनी। कहूं फूल राजा हुए बैठा, कहूं सिमट भयो शंकर इकैठा। सगरी श्रेष्ठ दिखाए अचंपव, आद जुगाद स्वरूप स्वयं भव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्य उबार असिख्य संगरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हुए मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा हुए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट छाह छुए सकै न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा, काल फासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दुख ते रहा। खड़ग केत मैं सारण तिहारी, आप हाथ दे ले हो उबारी।

सर्व ठौर मोहो सहाई, दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान, अनेक कहें मत एक न माने। सिमृत शास्त्र वेद सवै, बहु भेद कहें हम एक न जाने। श्री असपान कृपा तुवरी कर, मैं ना कहो सब तोहे बखाने। दोहरा सगल द्वार कहो छाड़ का, गहयो तुहारो द्वार। बाहे गहे की लाज आस, गोविंद दास तुहार।

राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया। राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईया सबदू तगा बहु हरी केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी सो के ओ मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिन कै मन वसिया वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो। साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटहो जिस दिया एह वडियाइया। कह नानक सुनो संतहो शब्द धरो प्यारो। साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागा। कर सुभागा शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन काओ से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ।

रहत दान विवेक दान विसाह दान पुरुषा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृत सर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगा जुग अटल तर

जब लव नहीं भाग लीला रिउदा तब लव प्रमते फिरते बहुताय। कल कोर समुद्र मै बूढ़त थे कब हूँ मिट है नहीं रे पछुताय। तत् विचार यह मथुरा जग तारन कौ अवतार बनाय। जपयो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ न आयो। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुरपारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोविंद सवारी। चली पीड़ी सोडियां रूप दिखावन वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा वड जोदा बहु पर उपकारी। पुछ न सिख अरदास कर छे महला तक दर्श निहारी। आगमे अगोचर सतगुरु बोले मुखते सुनो संसारी। कल युग पीड़ी सोडियां निहचल नीव उसार खिलारी। जोग जोग सतगुर तरे अवतारी। वड्डा तेरा दरबार सच्चा तुद तखत सिर साहा पात साहु। नेह चल चौर छत अस कृपान खंडो खड़ग तुपक तवर अरतीर। सैफ सरोही सहथी यह हमारे पीर। तुम्हारी शरण तुम्हारी आसा तुम ही सज्जन सोहेले। रख हो रखनहार दयाला नानक करके गोले। एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास रख हो सरनाई। अंदर सच्चा ने हो लाया प्रीत में अपना। तन मन हुए निहाल जा गुर देखा सामने। सुकहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दे नूर अरसह कुरसह चटिया। तुद डिठे सच्चे पाते सा माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दाए साहु। जिस पास बैठिया सोहिया
सवना दावेसा सज्जन सच्चा पाते साहो सिर सा जिस पास बैठिया सोहिया सवना दा वेसाहु सत नाम

गए मसक ते काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल जिनी नाम ते आया गए मसक।

सज्जन सुहेले राखो राखनहार दयाला नानक घर के गोले। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद

0: सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर्व विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फुरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुदाखे लख करोड़ सच्चे सप्तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सिफत सच्ची सालाहा सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कच न कच महला पहला
1: वड्डी वड्याई जा वड्डा नाऊ वड्डी वड्याई जा सच ने आऊ वड्डी वड्याई जा निचल थाऊ वड्डी वड्याई जा ने अलाऊ वड्डी वड्याई बुझे सपाऊ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा पे आप नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरबर जाए महला दूजा
0: एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्म करे विनाश एक ना पाने कड ले एक ना माया विच निवास ए पे आख ना जा पई जे किसे आने रास
1: नानक

0: गहने पौन पानी बैसंत चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन वर्तन सर्व जंजार, नानक मुसे ज्ञान में हुनी खाई गया जमकाल माला पहला।
1: वाइन चिले नचन गुर पैर हिलाइन, फिर सिर उड़ उड़ावा चाटे पाए, वेख लो कसे कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल आप पछाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम, निरपौ निरंकार सतनाम जा का किया सगल जहान, सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जिना मन चाओ, सिखी सिखिया गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार, कोलू चरखा चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत, लाटू मदानियां गाहा पंखी पौंदे लैना साहा, सूए चाड़ पवाइए जंत नानक पौंदे गणत नंत, बंधन बंद पवाए सोए पै कृत नचे सब कोय, नच नच हसे चले से रोए उड़ ना जाई सिद्ध ना होए, नचन कुदन मन का चाओ नानक जिन मन पाओ ते ना मन पाओ।

मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार, बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण को दीदार, हिंदू साला ही साला हां दर्शन रूपे अपार, तीर्थ नावे अर्चा पूजा करवास बेकार, जोगी सुन त्यावन जे ते अलख नाम करतार, सुख मूरत नाम निरंजन काया कायाकार, सतिया मन संतोख उपजे देने के विचार, दे दे मंगे सहसा गुणा सोप करे संसार, चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावेकार, एक होंदा खाए चले।

दीपालोआ मंडला खंडावर भंडा अंडज जेरज उत्पुजा खाणी सेत जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए के समाले सबना जिन करते करना किया चिंता पे करनीता सो करता चिंता करे।

0: पड़ पड़ गड्डी लगती है पड़ पड़ भरी है साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डी है खात पड़िए जेते बरस बरस पड़िए जेते मास पड़िए जेती यार जा पड़िए जेते सास नानक लेखे एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़िया ते ताकड़िया बहु तीर्थ पवया ते तो लवया बहु

योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मणे कत्री शब्दं सूर शब्दं सूद्र शब्दं प्राकृतय सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेयो नानक तां का दास है सोई निरंजन देव महला दूजा ए कृष्णं सर्व देवा देव देवा ता आत्मा आत्मा बास देवस जो को जाने पेयो नानक

जागत पयो आनंद तान मनुख जन कियो परगास गुर अंगद दियो निदान अकथ कथा ज्ञान पंच भूत वस कीने जमत ना तरास गुर अमर गुरु श्री सत कलयुग राखी पत अगन देखत गत चरण कवल जास सब विद मान्यो मान तब ही

अवर अनल अनाद किया साथ रेखने से सूर देन सैल तरु फल फूल दिया सुर नर

कच्चो कंचन पे हो शब्द गुर सर्व ने सुनियो बिखते अमृत होयो नाम सतगुर।

जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो। सचो सचा नाओ, गुण गोविंद है जियो। जीवा तेरे नाए, मन आनंद है जियो। सचो सचा नाओ, गुण गोविंद है जियो। गुर ज्ञान अपारा सिरजनहारा, जिन सिरजी तिन गोई। परवाना आया हुक्म पठाया, फेर न सकै कोई। आपे कर विखै सिर सिर लिखै, आपे सुरत बुझाई। नानक साहिब अगम अगोचर, जीवा सच्ची नाई। तुम सर अवर न कोए, आया जायसी जियो। हुक्मी होए निबेड़, परम चुकाए सी जियो। गुर परम चुकाए अकथ कहाए, सच मह साच समाणा। आप उपाए आप समाए, हुक्मी हुक्म पछाणा। सच्ची वडियाई हुक्मी हुक्म पछाणा। सच्ची

अलख सिरंदिया जियो, एक साहिब दोए राह वाद वदंदिया जियो, दोए राह चलाए हुक्म सबाए, जन्म मुआ संसारा। नाम बिना नाही को बेली, बिखला दी सिर पारा। हुक्मी आया हुक्म न बूझै, हुक्म सवारण हारा। नानक साहिब शब्द सिंजापै, साचा सिरजनहारा। भगत सोहे दरबार, शब्द सुहाया जियो। बोले अमृत बाण, रसन रसाया जियो। रसन रसाए नाम तिसाए, गुर कै शब्द विकाणे। पारस परसै पारस होए, जां तेरै मन भाणे। अमरा पद पाया आप गवाया, विरला ज्ञान विचारी। नानक भगत सोहन दर साचै, साचे के वापारी। भूख प्यासो आथ, क्यों दर जाय सा जियो। सतगुर पूछो जाए, नाम त्याए सा जियो। सच नाम त्याई साच चवाई, गुरमुख साच पछाणा। दीना नाथ दयाल निरंजन, अनदिन नाम वखाणा। करनी कार तुरहों फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा नाम निवारी। करनी कार तुरहों फुरमाई, आप मुआ मन मारी। नानक नाम महारस मीठा, तृष्णा।

बोल दिवाहे गुरु, एक ओंकार वाहे गुरु जी के फतेह श्री भगौती जी सहाय, वार श्री भगौती जी के पातशाही दसवें प्रथम भगौती समरका गुरु नानक ले त्याय, फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होए सहाय, अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आइया जैस डिठ सब दुख जाय, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निध आवे ताय, सब थाई होए सहाय, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय, दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी पंजां प्यारिया सोहां साहिबजादियां, चालियां मुकतियां हठियां जापियां तापियां, जिन्ना नाम जपिया वंड सगया, देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता, तिना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत शीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया चरखड़िया ते चढ़े आ रिया, नाल चराए गए गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया, धर्म नहीं हारिया सिखी केसा स्वासा नाल निभाही, तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवै, जहां जहां खालसा जी साहेब तहां तहां रथ आरे आए, तो देग तेग फतेह बिरद की पैज, पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय, खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान पुरसा दान, दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान, चौंकियां झंडे बोंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार, बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जे सिखां दा मन नीमा मत उच्ची, मत पत दा राखा आप वाहे गुरु, हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो, श्री ननकाना साहिब अते होर गुरुद्वारिया गुर धामा दे जिन्ना तो पंथ नु विछोड़िया गया है, खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान, खालसा जी नु बगसो
हे नुमानिया दे मान नतानिया दे तान नियोटे आंदियोटा तान तान श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूर साबद चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिना दी अरदास समूह संगत अते टहलिया दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नू अपने दरों घरों सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्सना शुभ भावनावां पूरियां करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देख हाजर है दर परवान होवै परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौन दी आग्या बख्सो सुख होवै नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला

0: रिथे रथ त्रिथे रथ जते का जोर ग्रथ वाहो द्वाप रथ पे का सत ग्रथ वाहो काल युग रथ अगन का कूड़ गै रथ वाहो महला पहला
1: शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आछे साथ रहे सबको सच समावे रिग कह रहा प्रभु राम नाम देवा में सूर नाय लिए प्राच जाए नानक तो मुखंतर पाए जुज में जोर छली चंद्राव कान जाद पहया पार जात गोपी ले आया बिंद्रावन में रंग किया काल में वेद थर्मन हुआ नाव खुदाई लोपया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद सचियार पड़े गुणे तीन चार विचार पाओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ी।

0: सब को निवे आपको पर को निवे न कोए तार तराजू तो लिए निवे सो गोरा होए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर्गा है शीश निवे क्या थी है
1: पाठ पुस्तक संध्या बादं सिल पूजस बगल समादं मुख झूठ